0: करूँ मार
1: हाथ में किया है
0: करूँ मार कहीं की पकड़ूँ मार
2: नवतर
0: पकड़ूँ मार कहीं की पकड़ूँ मार।